0: करम करथो वे न कर्म तिस्पे स्नोका निर्मल धर्म
1: काहु फल की इच्छा नहीं पाछै केवल भक्त कीर्तन संग रखै
0: मंतन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप गड़ा अब रह नाम जपावै नानक को वैष्णो

0: मानी कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर कई कोट पिग आत्म निकोर
0: कई कोट पर दर्व कहर है कई कोट पर दुख न कर है
1: कई कोट माया शर्म माहे कई कोट परदेश परमाहे
0: जित जित लाभ हो तित तित लगना।

0: कोट द्वये स्पूमंडल
1: कई कोट सस्य सूर्य क्षेत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर क्षेत्र
0: सगल समग्री अपने सूतारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे
1: कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद पुराण सिमत्यार शास्त्र।

0: आप नहीं भागी परम।
1: सहस्यान भलिया न जाइए, नानक ऐसा गुरवड भागी पाइए।
0: सफल दर्शन बेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत।
1: उठत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरग गवे।
0: सुनकर बचन करने आगाने, मान संतोख आत्म पति आने।
1: पूरा गुर रखियो जाका मंत्र, अमृत इष्ट पेखे होए संत।
0: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक दिस
1: एक उस्त अनेक, सत पुरख पूर्ण भवेक।
0: काहू बोला पौतक प्राणी, अगम गोचर प्राग निर्वाणी।
1: मेरा हार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने न पाई।
0: अनेक भगत बंदन।

0: जल पाई
1: सो समदर्शी सच का बेता नानक सगल सृष्टि का जेता
0: जंतर सब ताप हाथ दीन दयाल अनाथ कुनाथ
1: जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआज

0: संत संग अंतर प्रभु ठीठा नाम प्रभु का लागा मीठा
1: सकल समिगरी एत्र काकमाहे अनक रंग नाना दृष्टाहे
0: नौनिद अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम
1: सुन सुमाल अनहद तहनाद कह न जाई चर्ज विस्माद
0: किन देखे जिस आप दिखाए नानक तेहि जन सोझी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत
0: धन माहे आकाश प्याल सर्व लोग पूर्ण पितपाल
1: बंकन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: कौन पानी बसंतर माहे चार कुंट तै दिशे समाहे
1: तिसते पिन नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नाल सुख पाओ
0: वेद प्राण सिमरत मह देख शशियर सूर नखत्तर मैं एक
1: वाणी प्राप्ति सब को बोले आप डोल न कबहु डोले
0: सब करा कर खेला खेल मोल न पाइय गुण अमोल
1: सब जोत मैं जाकी जोत तार रहे स्वामी ओत पोत
0: गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं इहो बसास
1: संत जना का पेठन सब ब्रह्म संत जना का हिता सब धर्म
0: संत जना सुनै प्रभु सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख मानै करन करावन हार पब जानै
1: अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
1: तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एकंकार
0: लिख कला लिखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए
1: कव निकट

0: 305 चरित्र समाप्त
1: मस्त सब मस्त अफजून
0: दोहरा दास जान कर दास परे की जय कृपा अपार
1: आप हाथ दलाख मोहे मन क्रम बचन विचार
0: जो पई मैं नग्नेश है प्रथम मनाऊं।

0: विचार कछ नाहि।
1: जलते उगत तरंग ज्यो जल ही बिखरै समाहि।
0: दोहरा जब आइस प्रभु पयो जन्म तरा जगियाइ।
1: मैं कथा संक्षेप ते सबहुं गत सुनाहि।
0: अब बाच दोहरा ठाड पयो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर।

0: देह कोटिक विष्णु महेश
1: कोटि निर्मा के तेरा सच क्रोध लेश
0: दोहरा राम कथा जग जग अटल सब कोई पाखत नीत
1: सर्ग पास रख बरकरा सगली पुली समेत
0: चौपाई जो ही कथा सुने अरगावे
1: दुख पाते निकनावे
0: कृष्ण पद की ये फल होई
1: आद ब्याच व सकन कोई
0: सम्मत सत्रह सह सब चावन
1: हाड़ बदी प्रथम सुख दावन
0: तुम प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा
1: फूल परी लो ले सुधारा
0: दोहरा नेत्र तंके चरण तारे सतद्रव तीर्थ रंग
1: श्री भगवत पूरण की ओर अगर कथा प्रसंग
0: साध असाध जानो नहीं।

0: सदा सेवत सलाहे तेरी, नाम मन वसावे।
1: नाम जिनके मन वस्या, वाची शब्द कनेरे।
0: कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नाई कर तेरा।
1: सच्चा नाम मेराया धारो,
0: साच नाम धार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया।
1: सच सुख मन आए वस्या।

बोलो जी वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले ते आए फिरंगत गुर ते अमरदास। रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हरदाय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस दिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ नित आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके खालसा जी साहेब बोलो जी वाहिगुरु। आप जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ति हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देख वाही देख सुन के अंडट कीता तिना प्यारिया सच्यारिया की कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहेब बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखड़ियां दे चढ़े तनारियां नाल चरवाए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानी कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निवाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤਾਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਵਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿ।

हरनाम संहो सुहिला। ऐसा नाम सदा तिहाई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कूट लख वह, नाम जपत तह पैर वाह। अनक विघ्न जहाय संघार, हर कनो तत्कार उद्धार। अनक जुवन जन्म वर जाम, नाम जपत पाय विश्राम। हव मेला मर कबह तो, हर कनम कूट पाव हुए। ऐसा नाम जप हमर रंग नाम पाई है। साध के संग जिम वार की, कर जहन कोसा। हर कनाम उसा संग तोसा।

हर का नाम जानका मुक्त जुगत, हर का नाम जानका द्रवत भुगत, हर का नाम जानका रूप रंग, हर नाम जपत का परण भंग।

हर हर दियोवा, हर हर जन का मार्ग जिना, हर तन जन का वाप प्रभु दिना, हर हर जन का ऊट सतानी, हर प्रताप जन वरना जानी।

इहो निर्गुण गुण कछु न उपजै बक्षु रिहु तब नानक विजय जय प्रसाद तरु प्रसव बस सुत प्रात्मी वनता संह सह जय प्रसाद पी वह शीतल जल सुखदय पवन पाव कमला जय प्रसाद उपोग सब रसा

शिवोड़ झूठ संग वाच जो षड न सुअस्थिर कर मन जो गोवन सो दूर पुरा न छूट जाय तह कर श्राम कर संग सहाय तह पर हर चंदन जीव अवतार तोय कर तव प्रीत पसम संग होय अंत।

शिव कराय शिव पाया बहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापय लोक समान अंतर यगन बहर तं सुवाय गर पात्र कै शिव तराया था जगंत्र बसाय प्रभाव नानक के जन सहज समायत सोन अंध के सिमर पव कर कह जे होड निभाव कह उजार तू जा डोरा न कह जाय तव समझा पूरा कह विष्णु पद गावे गुण जतन कर तव पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उहस कवन करतार करुणा मैं दीन बेनती कर नान तुम्हारी कृपा तरा संग सहज सुहावन चीत जो बैराग ता सुप्रीत बलुआ के गृह

स्वारिमानतः प्रावकाव कभुनवसारि उन्जे प्रसाद बाग मेरे कुतना राखुरु प्रभु अपने माना जंके निमार बना तो बनाए उठ तो बैठ तो साधु तो सहति आयु तो सहति आयु जो का रखा है ये खाओ खाना नु तेरी रखा है जे प्रसाद करे बहुत दान मना अठ पर कर तो कह ध्यान

प्रसाद सुनहिं कर्ण नाद जी प्रसाद पीठ विस्मा जी प्रसाद बोल अमृत रसना जी प्रसाद सुख सहज वसना जी प्रसाद हस्त कर चल जी प्रसाद संपूर्ण फल जी प्रसाद परम गद पावे जी प्रसाद सुख सहज सुमावे

संग भया क्या कर साध संगत भई हमारी साध के संग बैठे साव रूप नान साध बैठे समझो साध की महिमा भी न जाना है जता सुन है तो जता बकिया न है साध की उपमा ते हुवन ते दूर साध की उपमा रहे पार पूर साध सुबह कना है अंतर साध सुबह सदा बे अंतर साध सुबह उचित उच साध सुबह मुचित मुच साध सुबह साध बनायु नान साध पापी यदना पाए श्लोक मन साचा साचा सोय बना पी खेत बिन को इंद्रान के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो यशपति ब्रह्म ज्ञान सदा नर लीप जह जार में कमल ले ब्रह्म ज्ञान सदा नर दोख जह सूर सर्व का शोक ब्रह्म ज्ञानी का दृष्टि

ब्रह्म ज्ञान की सब प्रमया ब्रह्म ज्ञान दिकाश पुरा न भया ब्रह्म ज्ञान सदा संदर्श ब्रह्म ज्ञान के दृष्ट अमृत वर्ष ब्रह्म ज्ञान बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञान के निर्वल जुगता ब्रह्म ज्ञान का पूजन ज्ञान अनुब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञान एक ब्रह्म ज्ञान का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञान का गरीबी समय ब्रह्म ज्ञान

ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का नास, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञान एक संहिता, ब्रह्म ज्ञान का हुआ जंत, ब्रह्म ज्ञान का निर्मल वंत, ब्रह्म ज्ञान जो करा प्रभा, ब्रह्म ज्ञान का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञान का दर्श।

सोदा राम नाम सार रस पीवै उस पंडित का उपदेश जाग जीव हर कथा हृदय सास पंडित कर जो नाव वेद प्राण समृत पूजा मूल सुख मह जान स्थूल कह वर्ण को दे उपदेश नानक पंडित का सदा दिवस वेद मंत्र सर्व ज्ञान कह वरणा मह जापै को नाम जो जो जापै का दुसा संग पावे जन कुपुले कर कृपा अंतर और तार पास प्रेत मुक्त पात्र को तार है।

भरपूर। कई कोट पाताल की वह कई कोट नरक वास कई कोट जन्म है जीव मर है कई कोट वह जन्म है कई कोट बैठ दिख खा है कई कोट पैर था को पा है कई कोट किए तन बंद कई

सर्व क्रियान जाक मन हुए कह नानक ता कि निर्मल सोई जब लग जाना मुझ दिका सोई ता विस्काओ सुख नाहि कोई जावे जाना में किस करता तब लाग गर्व जन में फरत जब तारा को बैर मिय तब लाग निह चल नाहि चीत जाग लाग मगन संग वाय तब लाग तरम राय दिव सजाय प्रभु कृपा दे बनन तू टा गुरु प्रसाद नानक का शूटा सहस।

प्राव के सेवक का को ना आह चाहे प्राव सेवक का उच देव चाहे जो प्राव अपने सिवालय ना नु सो सेवक दह दह प्रकटाया नी की गिरी मह काल राखे पसम कर अलस्कर को राखे जस सास न कर देवता को राख दी करात।

नाम रतन जन प्रमुख पाया ते सकेशावर नाम दृष्टाय नाम दान नाम रूप रंग नाम सुख नाम कसंग नाम राह जो जान द्रवता नाम दान नाम है नाम समाने

हर बिन दूजा नाहि कोय सर्व निरंतरी को सोया पोत पोत रवि रूप रंग पै प्रकाश साध क संग रच रचना अपने कल तारी अंक पै नानक हरि श्लोक साथ न चले बिन भजन विखे सगरी छार।

पाई। एक निम कर जुगम गाय अंतराज भोग बटियाई हर जनाव कथा मन पाई वह भोजन का प्रसंगीत रसना जापति हर हन परि सुकरणी सुभा तनवंत हृदय वस गुण गुरमंत।

कृष्ण सुजी पाई सुअंत सुवर अनंत कटकट व्यवरह भगवंत तरण माह आकाश पयर सर्व रूप गुण प्रत पार बान दिन पर्वत पार ब्रह्म जैसे अगत कर्म पावन पाणी वैसंत्र माहिचार कुंट देह देह समय देह पे नह कोठा गुरु प्रसाद नान को पाए बीत प्राण स्मृत मध्य सशियर सुन यात्र महीक बाणी प्रभु सब को बोलया बडोल न कब खंडोला सर्व कलाकार खेल खेल मोल न पाइया गुण अमूल सर्व ज्योत मह जाके ज्योत तार स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम करना नानक तेन मह हुब सास संत जनक अभिघंसा ब्रह्म संत जनक हृदय सब धर्म संत जना सुन सब वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता दस गिह रहत सात वचन सब सब कहत जो जो हो सो सुख मान करम कराव नार प्रभ जान अंतर बस बाहर पियो ही नानक दर्शन दे सब मुझ आप साथ किया सब साथ दे प्रभु सगली उत्पात तेह पावे तक विस्तार तेह पावे तई कंकार अनक कला लखी नह जाय जह पाव तह लय मलाय कवन निकट कवन कहिया दूरा पिया पा पार पूरा अंतर्गत जह जनाय नानक जना बुझाई

अलंकारम असंख मूर्ख अंधकूर असंख चोर राम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवट हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फेराहे असंख मलेश मल पाक खाहे असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावे एक बार जो तुत भावे साई भली कार दूसरा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव गम अगम असंख लो असंख कह सिर पार हो अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन्हें लिखे ते सिर नाहे जे फरमाए तिव तिव पाहे जे ता कीता तेता नाव मिण नावै नाही को थाव कुदरत कवन कह विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तुसदा सलामत निरंकार भरिय हाथ पैर तन देह पानी धोता उतर सुखे मूद पलीती कपड़ हुए देशा बून लिया वो धोए तो

तो जुग जुग एक वेश एकमाई जुगत व्याई दिन चिल्ले प्रवाण एक संसारी भंडारी कलाई धीमान जो तिस पावै तवै चलावै जो होवै फरमान।

मूर्त पूर्ण पुरुष पार सर्व स्वर जीव स्वयं भवगण भंजन हार काल हिम कला संयुग अकाल पुरुष आदेश धर्म धाम सो परम रहत भूत रख भीषांग रग रंग जा कह जात पाद नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दाय काम आप रूप मेघ अन उस्तुत एक पुरुष धूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंग हीना भांग अनादम एक पुरुष पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वतयन पीख सर्वशास्त्र न जानहि जेह रूप रंग कर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाग नित कोट सुमृत पुराण शास्त्र न वही वह चेत मद पार संत प्रसादम

कहु लख्यो हर अवाची दिशा में है कहु पशाह को शीश निवायो कहु भूतान को पूजत है पासो कहु मृतान को पूजनता हो कुर क्रिया उर्ज्यो सभी जाग।

चौपाई संबसुत्र सहस्पणिज्या अर्ध सहस्पुंतीन कहिज्या पाद्रव सुद्यष्टमी रविवार तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा स्वय।

प्रभ मिलो देहो उपदेसा। अगलियां पंक्तियां विच पातशाह फरमान करदे हन कि हे मेरे वाहिगुरु, कृपा कर दिओ, दर्शनां दी दात बख्शिश कर दिओ ते मैं की करां, मैं तेरे चरण मल मल के धोवां। क्यों? तेरियां चरणां विचों ही सारा कुछ प्राप्त होना है। ते ये मेरा जिहड़ा मन है, मैं आप जी दे चरणां विच समर्पित कर दूंगा। सुन मीता हों तेरी शरणाई आया, प्रभ मिलो देहो उपदेसा। हे मेरे वाहिगुरु, मैं तेरी शरण दे विच आया हाँ, प्रभ मिलो देहो उपदेसा, दर्शनां दी दात बख्शिश कर दिओ और बाणी दी दात बख्शिश कर दिओ, उपदेश बख्शिश कर दिओ, ज्ञान बख्शिश कर दिओ कि जिहड़ी सुरत है तेरियां चरणां नाल जुड़ जावे। ते अगलियां पंक्तियां विच पातशाह फरमान करदे ने, हे परमात्मा दे प्यारिया, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा एक कर्म कर लें। केड़ा? मान ना कीजै शरण परिजै।

सोए पै किरत नचै सब कोई, नच नच हसै चलै से रोहे, उडना जाहि सिदना होहे। नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ।

बिन सतगुरु किने न पायो, बिन सतगुरु किने न पाया। सतगुरु विचार रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया।

बोलो जी वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हदाय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस दिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधावै धाय। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके खालसा जी साहेब बोलो जी वाहेगुरु। आप जी दे पंच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ति हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई ते गवाही देख सुन के अंडिट कीता। तिन्हां प्यारियां सच्चियारियां की कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहेब बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते वंद वंद कटवाए खोपड़ियां लहाइयां चरकड़ियां ते चढ़े तां नारियां नाल चरवाए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानी कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सवासां नाल निवाहे तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहे। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी साहेब बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रछिया रिहाए। देख देख फतेह बिरदगी पैज पंथ की जी श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु।

रत्ना श्री पांचो गाई माल रात कौशक संगाई मारू मस्त अंग में बारा प्रबल चंद कौशक उपारा औखट औकुंपा और आनंद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए।

अष्टपुत्र में कहे सवारी, उन आई थी पक्की बारी, पछे लिपट मंजरी टोटी कही अलाप, कामो दियो गुजरी।

तो भेज के जाना सपने श्री राग बहगावे भांचो संग बिरंगन लावे बैरारी करनाटी धरी गौरी गावे आसावरी कह काछे सिंध भी अलापी श्री राग क्यों पांचो थापी सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर अष्ट।

गौण मलारी तुनी उन गावे आशा गुन गुनी ऊंचा सुरसु हुकुन कीनी मेघराज चम पांचो चीनी बैरा तारका।

के बोलन को लिए जैसा धरे प्यार। अमृत वेला सच ना बढ़ियाई विचार, करमी आप अकर्मिया कर्मिया वे अपना मदनी मोला। नानक रे थाणिए सब अपेस्या अपने जाई कीर्तन होई, आपे आप निरंजन सोई जिन सेवा तन पाया। मान नान गाविया गुणी दान गाविया, सुनिया मत रखिया पाओ दुख पर सो कर ले जाई। तुम नादन गुरमुख वेदन गुरमुख हर हस्त माई, गुर ईश्वर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती।

तेरी नाम मन बसावे, नाम जन के मन बसिया बाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा आधार, नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाई, सुख अनुभाई बसिया जन इच्छा सब को जाए।

जय मात पिता सुत मीत न पाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई जय मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम खिन माहे उदारी।

0: ताकै बल बल जासा।
1: सकल पुर में पुर प्रधान, साल संग जाका मिटे अभिमान।
0: आप को जो जाना नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा।
1: जाका मन होए सकल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना।
0: मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखा सकल श्रेष्ठ साजना।

0: पाछे पावे, एक बस्त कारण बिखोट गवावे।
1: एक पीना दे दासी रले तौ मूड़ा को पहा करे।
0: निष्ठा कस्यो नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कार।
1: जाके मन लगा प्रभु मीठा सब सुनता हूँ मन बूटा।
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया। अपनी मान कुछ बहुत सा होले अज्ञानी मन रोष करे।
1: अपनी प्रतीत अपनी खोवे पर उसका विश्वास न होवे।
0: जिसकी वस्ते सागे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे।
1: उसते चौकन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल।
0: अनित पात माया के हेत सर्व रहो बत जान अनेत।
1: जेकी छाया से रंग लावे ओ बिन से ओ मन पछतावे।
0: जोड़ी से सोचाल

0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारथ धाम।
1: नानक ताते जन जय कट बसियो हर नाउ, नानक ताके बल बल जाओ।
0: रहत अबर कुछ अबर कमाओ।

0: राष्ट्रपति
1: जिस प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे
0: जे प्रसाद सुनंद तन लावे तिसको सिमरत रंग गत पावे
1: जे प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याय सदा मन अंदर
0: जे प्रसाद रे संग सुख बसना आठ पह सिमरो तिस रसना
1: जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याये ध्यावन जोग
0: जे प्रसाद पाठ टंबर हटावे तिसे ध्या कत अवर लुभावे
1: जय प्रसाद सुख से सोई जे मन आठ पैर ताका जस का बीजे
0: जय प्रसाद तू सब को मान ममता को दास रसन भगवान
1: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जप दंगा मान पावे नानक पासे ती कर जावे
1: जय प्रसाद आरो

0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी का सब
0: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार।